राजा राजा अपान उरिमया कूपड़ पुत्र सुविकारत्ती नावी एंगलुक्कु तंदा।